0: وديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: ए मावेस सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्टो को मावेस ही मना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगड़ा गेल्लुन दिरुमा की किहा मोय कमे ए में मावेस सुट्टा लाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हैं मिलियन वुरे किना मीहु मरुआ कमा ताफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा।
6: दिवे ही FM, नुआ दिहे एके मेगाहर्ट्स।
7: मी अहमद आमिर,

0: lasciala. Hela, lasciala.
1: मुन्ना कोबा की ही ना के देड़ा ही है
2: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल हालो में देड़ा ही है
1: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूं अता
3: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
2: थी को तुम हाउ दा ही रंगल लाए थी हैं मुन्ना एक ही आह हाल बलाफ़े मुन्ना सकां कं को देन्ना है थी मुन्ना वरहा उपावे

हम अकाशवरु मारुवेफावा मी हूँ अलुन दिरुवनी तिमन रसखलांगे अदि एवरेंग इसकोफावा अमल तकाय एवरेंगे फहद दू कोफा दिय असर्थ तिमन रसखलांगे लिववमे अदि खोम में खमें में बयाम वेगिम वा फोतिग्गा तिमन रसखलांगे हिमेनुवी में।

0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल हालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूं अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
1: थी को तुम हाउ दा ही रंगल लाए थी हैं मुन्ना ऐ कही आह हाल बला फे मुन्ना शकं कं को दिन ना है थी मुन्ना वरा उपावे
3: अब दफ़े ही लावत काय को माजी के तिरिया
4: हित कुंजा गहोदी एम्मे गायावा फन्नानुंगे हांदान तकाय को
3: हांदान तोगे तिरिया दतुर कोल्लमा

0: ਸੀਨ ਮੂਵੀ ਮੂਡ ਗ ਬਿਖਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੇ ਐਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਰਹੀ ਤਾ
1: ਅਸ ਤੋ ਹੀ ਤਾ ਕਰਨਾ
0: ਅਸ ਤੇ ਕਰਨਾ
1: ਮੈਂ ਰਸ ਵਾ ਕੋ ਤੇ ਕੀ ਗੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਹਮ ਹੁਰੀ ਆ ਫਿਲਮ ਕਾ ਗੋਤ ਕ ਬੇਲੀ ਫੋਨ ਨਾੜੇ ਦੈਂ ਇਹ ਹਮ ਫਿਲਮ ਤੋ ਗੇ ਮਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮੇ ਜੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੇਵਰ ਕਾਣ ਬੋਡੰਗ ਅੰਨਣੀ ਨਿਊਮਾ ਫਿਲਮ ਗਾ ਮਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਿਊਮਾ ਉਲੇ ਤੇ
0: ਇਹ ਸਾਜ਼ਾ ਗਾ ਵਾ ਕੋ ਤੇ ਮੇਜ਼ੋ ਮੀ ਕੀ
1: ਆ ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਾ ਗਾ ਵਾ ਗੋ ਕਮ ਨਿਊਮਾ ਗੇ ਸਮੇ ਕਾ ਦਾ ਅਬਿਊਸਿਵ ਗੋਤ ਕ ਤਾ ਇੰਨਣੀ ਸੋ ਹਮ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅੰਨਣੀ ਹਮ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੋ ਗੇ ਮਨਜ਼ਰ ਤਾ ਕਾ ਚਿੰਦਾ
0: ਓਕੇ ਮਾ ਬੋਡ ਮਿਕਸ ਕ ਪੇ ਫਦੋ
1: ਹਾਂ
0: ओके एम देम यो दी यस ऑन अराउंड एंगे मिजो देना फिल्म ग मे वा कंत तो गे स्टेटमेंट देनी म हसिन बुणम वि स्टेटमेंट की रंगल स्टेटमेंट तो नु तो रंगल नूनिया को बा तो रंगल गोतकी इंगे
1: ओके
0: फुरतम सवाल की लुफशान नुता जायद एम फुरतम रशा फै बैग एंग ऐसा रहमत त्रिया या देमी हु हिंदी लवे की फशान
1: आ यस
0: ए लवे की दिल तो पागल है दिल दीवाना है ए लवा
1: नो
0: कौन लवे
1: कुछ कुछ होता है
0: वो वारा बराबर इंगे दे मैं तिजाइद के फरात हूँ हादी ऐप फोन वाले नहीं माया ए फोशिगन गोंडे नहीं सेंट तो फुलिए
1: नुबे
0: कोचे
1: शैम्पू
0: मीची अंदाज़ के बोल तो अहम मागे लोन डक्का खालास करने जे मुद्दत का दीफे नहीं एंग आहार
1: रंगलो
0: रंगलो
1: हाँ
0: ahamma dengha bara aniya koramu tibuna ek hasin kurim wah dekhi ruga zaidu wah ka dakang hurita fenigen giyan aswara ruli asken sual ta ke kuram fashane ko fe na afale ka hore fahane efo apple do efo coaching heye bunima arima bunane efo apple then devana fara efo aneka vis coaching he hima rima bunani aeroplane kama
1: rangalo
0: rangalo
1: ओह नुबे
0: कौन से के बुनानी
1: एफ ओ आफा दे बुनानी
0: एफ ओ एप्पल बुने हाँ देख ते मने रोमू रोमू ये एफ ओ असलो एफ ओ इन किया अच्छी आने अहम मक्कियों का बेनो भी किए कहेंगे ता
1: एक ही
0: है एफ ओ अहम माँ बुने तो ये ना के दो तो कबे सो इन्ना मक्की अहम माँ है बुनो अभी किंग एफ ओ कोचिंग है बुनी मा रीम आम ब्रेन एफ ओ एप्पल ले देवना फार ब्रेन एयरप्लेन के नो इंगे देवना फार ब्रेन एफ ओ एप्रिकोटे
1: हैं ता
0: ओके इंगे देन मी बैमी निम्माले यस सो नो राउंड ओके देन ओते लवता को इंगे लवता रीतिता
1: मारे रीता मारे रीते लवता मारे रीता आ कुरी के दिवे लवता मारे रीता
0: मी दे लवता को सुवा कोफिया इंगे नता
1: यस इंगे
0: आदि आने का मारे कॉन्फिडेंट है हमा
1: कॉन्फिडेंस इनन जेन दो आ
0: यस ओके फुरत में सवाल की फिल्म गे में फुरत मारने लवे की
1: तुम साजा फिल्म गे
0: आ आ साजा के वाके में दकनी हुस
1: ಎಮ್ಮೆ ಫುರತ ಮಣ್ಣ ಲವೇ ಕಿ ಹಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ನೈ ನ್ಯೂ ಮಾಯಾ ಜೈದಾ ಉಲೆ ನ್ಯೂ ಲವೇ ಲುಫ್ ಶಣ ದೆ ಮಿ ಹ ಹ್ಮ್ ನಿಮ ಹೊನ್ನ ನ್ ಯೆಲೋ ಕುಲ ಗೆ ಚಲ್ಲಾಂ ಕರ್ ನೆ ಹ್ಮ್
0: ಹ್ಮ್
1: ನಗಳ ತಮ ಕಿ
0: ದೆ ರಂಗಳು ಕಣೆ ಹಮ ಲವೇ ಗೆ ನಂಗಸ್ ತು ಮಿ ಜೂ ಬೇನೋ ಮಣಿ ದೋ

0: ओके देमति जायदा रीमा एका को अनिका को देके लोबवावा के बुना हिसाबों अन्न लवेंगे ता
1: नेंगे
0: नेंगे लवेगे अंतर नेंगे नि दो मिसाल का मेजो इवा लफिया मु मी को हिसाबे गन्ना को लवे कइंगे ने ता
1: इंगे दान
0: गैलेक्सी दो ए मेजो इवा नेंगे इवीमा इंगे तो बलमा

0: ಫರ್ಬದಮತಿಗೆ ಹಿಗ್ಯಾಂ ಸರಹದೆ ದಕ್ಕಾದೆ ಮಿ ವಾಹಕಾಗ ಫೆನ್ನಣಿ ಜೀವತಾಕ ದೇಮಿಗೆ ಗೊಸ್ಪಾವ ನುರಕ್ಕಾದಿರಿ ಆಯಲಿ ದುಷ್ಮಣ್ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆಯ ಫೆತೆ ದಿಜುವಾಣಿಗೆ ವಾಹಕ ಆಯಲಿ ಆದ ಕಾದತಕ ಕವ್ಯಾತವ್ಗೆ ಕಸ್ತೊಳ್ತವ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಉಫೆದೆ ಲೋಯಬಿಗೆ ಸಬಬುಂ ದೇಆಲಾಗೆ ಮುಳಿ ನಿಜಾಮ್ ಹಲಾಕುಗೆಂದ ಹಿಸಾಬ ಕಂಕಂದೆ ಲೋಬಿ ಹೋದಮ ಕುರಾ ಮಸಕದುಗ ಎಮಿಹುಣ ಜೆಹಿಣಿ ಅಮಿಲ ಆಯಿಲಾಯ ಮುಳಿ ಮುಜ್ತಮ ದೆಕೊಳತ್ತೆದುವ
1: मेरा नाम सर बुलंद है, शायद मुदस्सिर ने कभी जिक्र किया हो मेरा आपसे।
0: मी रेटिंग्स के गोतुंग मी लिस्टों के एमे कुरी गोले एंगु फेदुंग जंजीरे नंग एकानिवेस एकाविस एपिसोडों हाथर से ते कमिलियन ब्रेकिंग व्यूज यूट्यूब का लिप फावे अधि एवरेज को कम में एपिसोड का 12.7 मिलियन व्यूज लिपुनो दुवस्त के वेस्तिया हम न्यूज से रिपोर्ट को फवागत का अमी रेटिंग्स रिकॉर्ड तो मुगुराली ड्रामा है
1: असली आइडेंटिटी आपके क्या है ये छुपा कर रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए आपको यकीन दिलाता हूँ आप मुझ पर उतना ही भरोसा कर सकती हैं जितना मुदस्सिर पर करती थी
2: कहाँ है मुदस्सिर
3: जब तो याद आए चैन चुरा
0: मिद्वसर पाकिस्तान ड्रामा तक लोबिकुरा एमेगिनमी हूँ एक कोनिक का मैसेज को वाहक दक्कमुदा ड्रामा की हम टीवी को में हुकुर अधिहोनी हिरदुवही केरे अशित जहर दक्का आ

0: ओएसटी
1: आदि देम्योती ओएसटी मे बैग मि हफ्ता ग मि बलालनी दिवे सिनेमा के माजी ग लावेकन मि हफ्ता ग मे मि होवाली इतिहास 11 बनार नुकिन फिल्म लोदिफा के प्रमोशनल लव लव किया फवनी उनुषा मे लव हिमनाफवा फिल्म लोदिफा बलार मे वरा खास औफेद मे देहा सोळवनार बेवी हैवन गोमी फिल्म एवोडम एम मे कामया फिल्म की मि फिल्म मे फिल्म की व्यापारी के गुतु नाकामया फिल्म कमुग वियस फहुं फिल्म बेली किनफरातक कामु दिया फिल्म आदि हमें यह कि एक गांव में फिल्में वोट का बड़ा कामयाबी हो दी फिल्में आदि ओएसटी में भय मी हफ्ता का मी होवाले लोदिफा के मिलावया एक ही का मिहाई साबुं एमएफएस में शो निमालाना इराद कर व्या अन्ना हफ्ता का वेस मुनिफोई फिल्म के दायरा के एमएफएस के मालूमाता खबराएं की का अनबदल कराना

0: ए खियाल तका सहुराया केलदेवुनी मा पोडा
1: मिहात
0: मस्ते लाफा सामसलु मस्कोले नगाफा सहुराया को वालेवुनु मिहा तेने एकमकु अशाना बलहट्टाकेन हुरी ओळुवालन सहुराया कुरेवेने एव्विस कमेन्ने वी हुरिहा कमका बुनेमुनु एच्चे पुनेवुनी अशाना बलहट्टाकेन हुट्टा
1: दलफुले कोंगेले को आई
2: मम्मा हैप्पी एन्नुंदो
0: अशाना एही जहुरा ए पहनुवी
1: की वे हैप्पी नुआं वे मी मम्मा बेनु बिगोई
0: जहुरा देखकी वाहक अशाना कबूल एन्नु कुरे वो मायकु कुरंगे कंतो के वाहक देखकुम के पतल का तेमवेस अशाना देखकी एहिं वाहक ए
2: मम्मा नुजे नति हें उलेका डैडी आलु मेरी कुरम वेनु
0: अशाना मडु मडु बुनी
1: दरफला डैडी आय को नोले विगेनेनो मम्मा डिवोर्स वे एहन नोनस मिहा हैप्पी को उले उलेफा देंगे वह कुट्टाला खामा कुत दरिफुलती आई
0: वारा लोई पाए को जहुरा पुनी
2: बादी ओए बकिया अमेरी को रंवी नूं है एह वे मम्मा के कह तो बुननी बालालम वे के मियाई
1: अब वह कुरम वीनो डैडी की के बुने
2: डैडी पुनी डैडी के मसले ने तो मम्मा के मसले ने तिया मम्मा कह रही गाहाल बलाशो ए वाहक दक्कालं डैडी गुलियस मसले ने हैं
0: मिहा तकी एक हाला ओका तेरी मी है